0: जीव है जथरिया सकोए सूतक क्यों कर रखिए सूतक पवर सोए नानक सूतक क्यों ना उतरे ज्ञान उतारे धोए महला पहला
1: मन का सूतक लोभ है।

अर्जन हर गोविंद नौ सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइय जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निध आवै ताए सब थाई हुए सहाए। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाए। दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहेगुरु बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया। देख चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता। तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहेगुरु बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए। खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए। गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिखी केसां सुवासां नाल निभाहे तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहेगुरु बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी वाहेगुरु बोलो जी। प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक कर चिहन यार भरन जात यार पात नहन जहन रूप रंग यार रेख पेख को कह ना सकत केहन अचल मूरत अनपाओ प्रकाश अमित तोज कह जय कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गण जैन त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत भन त्रिण कहत तय सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम भरनत सुमत सेवक कै भरपूर जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सदका निरंकार प्रभ सदा सलामत कह न सकै को तू कद का ब्रह्मा विष्ण सिरे तै अगणत तिनका मोह भया मन मद का चवरासी लख जोन उपाई रिजक दिया सब हु कौ तद का सेवक कै भरपूर जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सदका फरीदा गलिए चिकड़ दूर घर नाल प्यारे ने हो चला ता पिजै कंबली रहा ता तुटै नेहो पिजौ सिजौ कंबली अल्लह वरस मेहो जाए मिला तिना सज्जना तुटौ नाही ने सुन यार हमारे सज्जन एक कराओ बेनंतिया तिस मोहन लाल प्यारे हों फिराओ खोजंतिया तिस दस प्यारे सिर तरी उतारे एक पूरी दर्शन दीजै नैन हमारे प्रंग रंगारे एक तिल पीना तीरी जय प्रभ स्यों मन लीना ज्यों जल मीना चात्रक जिवै तिसंतिया जन नानक गुर पूरा पाया सगली तिखा भोजंतिया लिख कतहे ना छूटियाँ खिन खिन भूलन हार बखसन हार बखस ले नानक पार उतार सुकहु टल गुर सेवियन एहनिस सहज सोभाए दर्शन परस आए गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नूर अर सोह कुरसोह चटियै तुद डिठे सचे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटियै
ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਿਰਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹੋ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਆ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵੇਸਾਹੋ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਿਰਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹੋ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵੇਸਾਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਤਨਾਸਰੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਨਾ ਤੁਮ ਸਰ

बजनी तोर मोर मन मान जान का पूरन दीज हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पतियार के आकी जय।

बहुत जन्म बिछुड़े थे माधव, एहो जन्म तुम्हारे लेखे कह रविदास आस लग जीवा। चेर पायो दर्शन देखे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। तनहासरी भगत रविदास जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम सर दीन, दयाल न तुम सर अब पति यार क्या कीजै, बचनी तोर मोर मन मन जन कौ पूरन दीजै।

0: पावड़ी वडी वडा अपार तेरा मर्तबा रंग तंग नेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किच जान ला सब किच तेरे बस तेरा कर पला तेरे कर आनंद वधाई तुद कार मान महता ते अपना आप जर सर्ब कला भरपूर दिसे जत कता नानक दसन दा तुद आगे बिनवता श्लोक
1: पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दुए दाई दाया खेले सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाच

आया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले किती छुट्टी नाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

तुम ही सजन सोहेले राखो राखनहार दयाला राखो राखनहार दयाला नानक कर।

पानत नानक शरण प्रभ तेरी। फिरत फिरत प्रभ आया पर आ तो शरण आए। नानक की प्रभ बेनती अपनी।

0: सत है सत है सत है।
1: पौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबा, रंग परंग अनेक ना जापन करतबा। जिया अंदर जियो सब किस जान ला, सब किस तेरा बस तेरा करपला। तेरे कर नद वधाई तुद कर, मान माता ते जे अपना आप जर। सर्ब कला भरपूर दिसै जत कता, नानक दा सनदात।

मशक्कत का नानक ते मुख उजले केती छुटी ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

मां सरण परे की राखहु शर्मा। जाप ताप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साध न जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच करमा, सरण परे की राखहु शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवियो वाच बेनती चाओ पाई। हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम कावहु, आप हाथ दे मोहे बचावहु। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिखियो सबै करतारा। मोर अच्छा निज कार दै करिया, सब बैरन का आज संगरिया। पूरन होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ते आऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिखियो हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरन काल का त्रास निवरी है। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुज जू करियो रक्षा। राख लेहु मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जक्षण उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जने आप सवारी। सिवकन को शिव गुण सुख दियो, सत्रन को पाल मोह बध कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत।

जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आप आपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत पेदा, जाको पेव न पावत बिदा। ताकौ करपाहन अनुमानत, महा मूड काछ पेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत पिन पिन तोहे तेती। तुमरा लखा ना जाए पसारा, केहो विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेत जकीनी, उतपुज खान बहुर राच दीनी। कहूं फूल राजा हुआ बैठा, कहूं सिमट पयो संकर इकैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं पव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख्य उबार असिख्य संगरो। दुष्ट जेते उठवात उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नह आ है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट छाह छ्व सकै न कोई। एक बार जेन तुम्हें संभारा, काल फासते ताहे उबारा। जेन नर नाम तिहारो कहा,

सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक न माने ओ। सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कहें हम एक न जाने ओ। श्री आसपान कृपा तुमरी कार मैं ना कहो सब तो बखाने दोहरा सगल द्वार कहो।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां, शब्दो त गावहु हरि केरा मन जिनी वसाया। कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरेआ तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सवारना, सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहेबा क्या नाही कर तेरा, घर ता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर सांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु बिटा हो, जिस दिया एह बड़े आईया। कहे नानक सुन हो संत हो, शब्द तर हो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तितकार सभागै। कर सभागै शब्द वाजे कला जेत कर तारिया, पंच दूत तुद वास कीते काल कंटक मारिया। तुर कर्म पाया तुद जिन कौ, से नाम हर कै लागे। कहे नानक तह सुख हुआ, तितकार अनहद वाजे आनंद।

सूरे दुख रोग संताप उतरे सुने सच्ची बाणी संत साजन भए सरसे पूरे गुर ते जानी।

वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती दी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास। राम दसै हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम। सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई। जिस डिठै सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरै कर नौ निद आवै ताय। सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री

पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जियो श्री ननकाना साहेब अते होर गुरद्वारे गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे नमाणिया दे मान नेताणिया दे तान ने ओटिया दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहेब जी आप जी दे पावन पवित्र स्थान सच खंड श्री हर मंदिर साहेब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी सोदार रहरास साहिब जी दे पाठ जी की अरदास पुल चुक मुआफ करनी सिखा पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह।

छुटत प्रवाह अमेय अमरा पाद अमृत सरोवर सद परेया ते पीवह संत करहे मन मज्जना पोब जिन्हो सेवा करिया तिन पौ निवार अन पै पद दीना शब्द मात्र ते उधर तरे कब काल ठाकुर हर दास तने गुर राम दास सार अपार परे सुन यार हमारे सज्जना एक करो बेनंतिया तिस मोहन लाल प्यारे हौ फिराओ खोजंतिया तिस दस प्यारे सिर तरी उतारे एक पोरी दर्शन दीजा नैन हमारे प्रिय रंग रंगारे एक तेल पीना तीरीजा प्रभ स्यों मन लीना ज्यों जल मीना चात्रिक जिवै तिसंतिया जन नानक गुर पूरा पाया सगली तिखा बुझंतिया तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सोहेले राखहु राखनहार दयाला नानक करके गोले अंदर सच्चा ने लाया प्रीतम आपना तन मन होए निहाल जा गुर देखा सामने सुकहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूरे अरसहो कुरसहो चटिया तुद डिठे सच्चे पाते सा माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पाते साहो सिर साहां दैसाहु जिस पास बैठया सोहिया सबना दा वेसा सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहां दैसाहु जिस पास बैठया सोहिया सबना दा वेसाहु सत नाम।

अब पतियार क्या कीजा, बचने तोर मोर मन मान, जान का पूरन दीजा। हम सर दीन दयाल ना तुम सर, अब पतियार क्या कीजा, बचने तोर मोर मन मान, जान का पूरन दीजा। हाँ बल बल जा

पौड़ी वड़े वड़ाया पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक जापन करते वाह जी अंदर जी सब की जान ला सब की तेरे बस तेरा कर भला तेरे

मोक कर संतन की तूर अंतर जामी पुरख बिदाते शरद मन की पूर नानक दास इह सुख मांग मोक।

दास राखहु सरनाई। प्रताप सदा गुर का घट घट प्रगास भया जस जन कै। इक पढ़ है सुन है गाव है प्रभात है करह स्नान करह प्रभात शुद्ध मल। गुरु पूजा विद सहित करंग कंचन तन होए परस पारस को ज्योत स्वरूपी ध्यान तरंग। जग जीवन जगन्नाथ जल थल मैं रहया पूर बहु विद वर्णन। सत गुरु गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारन तरणं।

0: दोए राजा मेहता कूड़ हुआ सिकदार काम नेम सत पुछिए बह बह करे विचार अंधी रईत ज्ञान में होनी पाए परे मुरदार ज्ञानी नचे बाजे वा भै रूप करे सिंगार उचे कूके वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करेगा वा भै मंगै मुख द्वार जति सधावे जुक्त ना जाने छठ बहा घर बार सबको पूरा आपे होवे घटना कोई आखे पत परवाना पिछे पाये ता नानक तो लिया जापे महला पहला
1: वधी सुभज नानका सच्चा वेखर सोए

बिमल सो जान जान के रे, अमें नाम जाको हुरिया। इन सतगुर से शब्द रस पाया, नाम निरंजन उर धरिया। हर नाम रसक गोबिंद गुण गाहक, चाहक तत् समत सरे। कवि काल ठकुर हर

छोटत परवाहा अमे अमरा पादे अमृत सरोवर सद भरिया ते पीवै संत करह मन मज्जन।

हाथ गोर दयाल हर नाम दड़ाया तिस प्रसाद वस पंच करे कवि कल ठकुर हर दास तने गुर रामदास सार अपा।

0: सीरत की गोरे रामदास राखो सरना
1: सुखहुटल गुर सेविया अहनिस सहज सोभाए दर्शन परसै गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवै सिफ दुख समदी नूर अर सोहो कुर सोहो चटिया तुद डठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सजन सचा पातशाह सिर शाह दशाहो जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा विसाहो सजन सचा पातशाहो सिर शाह दशाहो जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा विसाहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सलोक महला तीजा जगत मुआ मरदा जाए जिचर विच दम है तिचर नाचे तई

हाँ मैं विच जगत मुआ मर्द मर्दा जाए जिचर विच दम है तिचर नाच तई के करेगा अगर जाए ज्ञानी होए सोचे तन होए

अगर पाए जाए महला तीजा तोर खसम का हुक्म पाया वेण सत गोर चेतिया ना जाए सत गुर मिले अंतर राव रहियाल सदा रहियाल लाए दम दम सदा समाल दान दम ना बिरथा जाए जन्म मरण का पाओ गया जीवन पदवी पा

सब नाही पाना। उस तत बरन ना सकिया, साध साध कुर्बाना। उस तत बरन ना सकिया।

लख कुड़िया लख गान, लख ठगिया पहना मिया रा दिन जीना। तग कपाह हो कती है बामन वटे आए को बकरा रिन खाया सबको आखे पाए। होए पुराना सुटी है पी फिर पाई है होर, नानक तग न टूटे जे तग हुए जोर। महला पहला नाय मने पत उपजै।

0: दर गह अंदर पाइए तग ना टूट सपूत महला पहला।
1: तग ना इंद्री तग ना नारी पलके थुक पवै ने दाड़ी। तग ना पैरी तग ना हथी तग ना जेवा तग ना अखी वे तगाया पे वतै